0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक, यानी ये गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेष को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे, क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मेरी बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
0: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी। आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था, ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया। दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील। एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो अपने रेडियो से आज की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन। वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना। दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gaane Gana Mein Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanak on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gaana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनक और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनक पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग. राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे. गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची
2: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संग जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कंपोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्प्रेरी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कंपटीशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
2: आना ही था जो

0: That was Ur Chale by Last Minute India on our Gana Spotlight of the Week at RJ Kanika Instagram पर आओ and quickly इस indie pop quiz का answer करो. Palash Sen, a very popular independent musician, वो किस independent band का part है? उनके band का नाम आके मुझे बताओ. Palash Sen के band का नाम क्या है? At RJ Kanika on Instagram पर जल्दी जल्दी आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, बंजारे the artist का गाना 24 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैरन. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स, कुछ ऐसे भी गाने होते हैं विच डिजर्व अ स्पेशल शाउट आउट। ऐसे ही गाने के बारे में भी बात करने वाली हूँ। इट्स कॉल्ड गाने का नाम है बूम शाकलाका। एंड आई एम श्योर ये गाना, ये फ्रेज आपने जरूर सुना है। गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा, बिकॉज इट्स एवरीवेयर। ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है। वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था, पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना, हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है। छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है। एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट। कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है, एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट, बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला। उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया। उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन। हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे। पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूव कर रही हूँ दैट बूम शाकलाका, इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस। ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकलाका, अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है RJ कनिका। एंजॉय।

This song is a perfect concoction of Krishna, Dhandanyoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli baar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करा है उड़ी उड़ी. दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा. गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय. नंबर 2.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Avicii. It's hot.
1: थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते

हेलो पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची। वीकेंड आ गया और वीकेंड का मतलब प्लान्स। अब किसी के प्लान्स में गोवा है, किसी के प्लान्स में नाइट क्लब, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड पे क्लब मिर्ची सुनते हैं विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। क्योंकि वीकेंड के लिए भाई क्राउड जरूरी नहीं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मूड और जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्यू आवर्स बस। So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!

वीकेंड में दो चीजें आसमानी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस और हील्स। बाकी बिल जमी पर ही रहे, वरना मंडे का मूड खराब हो जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिकट।

वीकेंड क्रश का भी अलग ही नशा है। फ्राइडे को लगता है दिस कुड बी समथिंग, संडे तक रियलिटी चेक मिल ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, वेलकम बैक।

बारिश हो या वीकेंड, मूड तो है ही लेजी। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन का पार्टी कैंसिल करने का बेस्ट एक्सक्यूज मिल गया। एंजॉय करे एक साथ लेजी लम्हे।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go
2: on a ride.

विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब में

बेख्याली जरूरी है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

Welcome back, party people. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi और Yontika. Weekend पे किसी को अपना बनाना है? Simple. Food order कर दो यार. Music लगाओ और उनका favorite dessert secretly save कर लो. Romance solved.

वीकेंड हग्स आर फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ। वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है। या अली, तोड़ दुश्मन की गली।

हाँ हाँ सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका। डिफरेंस इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: अगर वीकेंड में दिल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

अपनी बैंक बैलेंस को गुप्त ही रखिए क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिकाऊ। प्यार तो मुश्किल है ही और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके सेल्फ रिस्पेक्ट सेव कर लो यार।

मिर्ची मंजी रिचर्डन मिर्ची ऑयोन का वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई ले गई. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: Don't even bother to explain, he says. Cause I don't want to hear it. Just get your shit.

तब होता है जब तीन लोग बोलते हैं मैं सोबर हूँ और तीनों एक साथ सोफे पे जाके गिरते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे एंड रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड यू आर

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं।

0: got what you need. Nothing can stop me. I'm all the way up.
1: वीकेंड पार्टी में एनर्जी ऑल द वे अप क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एंड नाउ हियर कम्स द हॉट स्टेपर.
0: Nothing can stop me, I'm all the way.

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जारी है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

सीरियसली टेस्ट जब फेवरेट सॉन्ग आए और आपका फ्रेंड बोले मैं डांस नहीं करता, 5 seconds later मकड़ा मोड ऑन एंड द फ्लोर इज गोइंग क्रेजी।

मिर्ची मिर्ची जन रिचर्डन मिर्ची ओयोन दिखा वेलकम बैक पीपल। वीकेंड आते ही शेर खुल गए। फ्राइडे तक जो ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे आज डांस फ्लोर पे बोलेंगे हेलो मूव प्लीज।

डांस बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते, कॉन्फिडेंस नहीं, एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

Your music loud, mood louder. Neighbors complain करे तो volume कम कर देना, पड़ी नहीं. Priorities people, club मिर्ची days with DJ Richard, मिर्ची और यौन ठेका.

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका बखिया गुलाब हो या रेड, वीकेंड के एंड तक सबका लुक सेम ही होता है, डिफरेंस बस फिल्टर्स का है ऑन सोशल मीडिया।

0: ओ जय जय शिव शंकर रज मूड है भयंकर रंग उड़ रे दो
1: यू आर फनी विद ओयोनिका एंड डीजे रिचर्ड ऑन क्लब मिर्ची।

होता कई बार है एंड वीकेंड पार्टी में क्रश भी कई बार हो ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस यही तो करते हैं हम तेरे प्यार में।

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोन का स्टार्टिंग योर वीकेंड। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए। दैट इज क्लब मिर्ची। हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड यस द साइन ऑफ ट्रैक, इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन। टाटा।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स स्पेशली इंडियन फेस्टिवल्स बिकॉज हर फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है एंड आई थिंक दैट इज वॉट रियली एक्साइट्स मी और नया कॉन्सेप्ट होता है यू नो दिवाली के टाइम हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के टाइम हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं कंप्यूटर की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं सो मेनी डिफरेंट आइडियाज कीप कमिंग सो जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है, Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है, based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलीडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलीडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइफ सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू आर थिंकिंग ऑफ व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं। पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम, बट इफ यू कांट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बींग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बींग बॉर्न और विष्णु बींग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड, तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाई योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार है या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं

भज विश्वनाथम आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् उपेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रवेशं वाराणसीपुरपतिं

भज विश्वनाथम। वाराणसीपुरपते स्तवनम शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां त्रियं विपुल सौख्यमनल्।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
4: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
1: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट, ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके आध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्सगिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर टर्की के बारे में लोग बात करते हैं। अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्सगिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफ कोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इज बिकम सो पावरफुल एंड मनी इज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी। वी हैव स्टॉप थिंकिंग, शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
4: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू हितेश।
2: On Radio Mirchi,
3: The Devdutt Patnaik Show.
5: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास के तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर आल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि नेचर में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो at least festival के time पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मांगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
2: ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो।
4: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
3: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहां जात पात की बातें नहीं होती। जहां आत्मज्ञान नहीं होता, जहां अहंकार होता है, वहां जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: समान। वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हू इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi #devdattonmirchi #devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन। एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे। कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था। शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है। यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है। और आज की मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है। कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है। इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी
0: नंबर 20।

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बना हूँ कि सिर्फ एक्शन ही करना है, मैंने और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन का एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है। मैं यार करूंगा, आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक अ रिस्क।
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाय ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगी आरा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानो, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी, और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, कर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।

0: एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट चलते हैं तो नोस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम। Here is आँख मारे from सिम्बा।
1: Top 20 Rewind।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 15।

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

0: बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लव वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गिव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन।
1: नंबर 14

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 13 तूने

0: लेकर।
1: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल 4, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
2: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं डिजर्व करता था। मुझे बड़ी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो तब हम 3 दिन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने से मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा। तो बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
1: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर ऊंचा लंबा कद। बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान। ये गाना है आइकॉनिक, दिस वन इज छैया छैया फ्रॉम दिल से।
3: टॉप 20 रिवाइंड।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर्स टीवी पे जाते थे और फिर ओटीटी पर, लेकिन मिर्जापुर ने फ्लो ही उल्टा कर दिया। डिजिटल स्क्रीन्स पर जन्म लेने वाली दुनिया ने मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर कर लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुके हैं। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया। एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है, विच इज ऑन नंबर 8, अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना। नंबर 8।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 7.

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, वीएफएक्स होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना, और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, उसमें उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। There have been songs like चल वहां जाते एंड सोच ना सके जो अरमान ने गाए, एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। Then there is a बेस अबरिया फ्रॉम MS धोनी जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। सो दीज आर क्रिएटिव कॉल्स। और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है। अपने भाई से प्यार करना एक बात है, लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी, और इस गाने की किस्मत देखिए, अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया, और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए, लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन। नंबर 5।

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं, अपनी रगों से जिया था। उस फिल्म के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड ए आर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू हट

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। स्टिल रेनिंग एट नंबर 1, दिस इज तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। So until the next time I meet you here on the Mirchi Top 20, this is Sirain, over and out.
1: Sirain ke saath, only on Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: O chanati kuri, o chanati kuri.

नी तू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: है बादशाह।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा।

मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक, यानी गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: सारे कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौर के गाने में मिल जाएंगे, भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव। दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है। एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है। वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है, और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है। नाउ अब कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है। रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है। हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ, कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। और हमने क्या किया, उन सब विशेष को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया, बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं। और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई। नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेष मान ले, कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा, आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे, क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है इसकी अब आदत हो गई है। ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है। लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक, उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना। गाने का नाम है तारे। 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: इट्स हॉट
1: 98.3
0: कनिका
1: के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7

0: मेरी बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगली वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
0: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी। आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था। ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया। दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील। एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन। वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना। दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बनी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to those simpler times. Gaane Ganaave Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanak on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gaana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेक और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेक पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग. राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे. गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कंपोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्पररी स्पेस में वी गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था विच वॉज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कंपटीशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर, हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
2: जो त

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, mera handle is @RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs, kuch aise bhi gaane hote hain which deserve a special shout out. ऐसे ही गाने के बारे में बात करने वाली हूँ. इट्स कॉल्ड
2: बूम शाकलाका, अरे बंदूक शाकलाका, चिल्ला रे बूम शाकलाका, दिला दे बूम शाकलाका.
1: गाने का नाम है बूम शाकलाका एंड आई एम श्योर ये गाना, ये फ्रेज आपने जरूर सुना है. गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा बिकॉज इट्स एवरीवेयर. ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है. वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना. हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है. छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट. कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया. उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन. हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं पर पढ़ते सारी शायरी जॉन एलिया जैसी है. इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे. पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकलाका, इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस. ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकलाका. अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनेका. एंजॉय.

पैकेज, सच एन एडिक्टिव हुक दैट बूम शाकालाका। अगर आपने आज पहली बार हमारे शो के जरिए सुना है तो आई एम श्योर कि आप अगले दो दिन तक ये लाइन बोलते ही रहेंगे। एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे बताओ ऐसे कौन से गाने हैं जो आप कभी सोशल मीडिया पर या किसी ट्रेंड में सुनते हो एंड देन वो बस दिमाग में अटक जाते हैं। बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले दोनों गाने वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं। अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप कराए उड़ी उड़ी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा, 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1 ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। Number 2.

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन. एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे. कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था. शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है. यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है. और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है. कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है. इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी.
0: नंबर 20.

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊं कि सिर्फ एक्शन ही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूं। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है, मैं यार करूंगा। आई थॉट इन माय माइंड आई हैव टू नाउ Change myself. I have to take a risk.
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाय ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज्ड ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 8

0: नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानु, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी। और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, कर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद, कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।
1: छूट गया।

एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट्स चलते हैं तो नॉस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम। Here is Aankh Mare from Simba. Top 20 Rewind.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot. Number 15.

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लवर वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गेव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 13 तू

0: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल फोर, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
1: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं डिजर्व करता था। मुझे बड़ी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो हम 3 दिन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया, मगर यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा सर, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
0: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर ऊंचा लंबा कद, बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान। ये गाना है आइकॉनिक, दिस वन इज छैया छैया फ्रॉम दिल से। टॉप 20 रिवाइंड।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.